0: ऐसा जोग कमाओ जोगी।
1: इस तरह केड़ा जोग होना चाहिए था? दसम पास साकल जी पास ज्ञान कर देना।

0: नगन फिरत जो पाये जोग, वन का मिरग मुकत सब होग।
1: गुरबाणी बार बार समझाए कह रहे ने पासा, जे इस तरह जोग जिस परमात्मा इस तरह मिल जाता ते मिरग भी इस तरह नहीं जंग जंगल के घूम रहे ने फिर रहे कहते ने।

गुरु नानक सच्चे पातशाह कलयुग दे महान अवतार उन्हां दी वड्याई भाई साहब भाई गुरदास जी सिख धर्म दे महान विद्वान उन्होंने अपनी कलम नाल कीती है। बड़ा सुंदर ए प्रसंग गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दी सिद्धा नाल ज्ञान चर्चा विचारधारा गोष्ठ जिथे भी कोई रब तू भुलिया इंसान गुरु नानक बाबा नू नजर आया सतगुरु उथे आप पुजे। संसार दी रीति है भई महापुरश वली पीर पैगंबर उन्हां कोल दुनिया जांदी है पर गुरु नानक सच्चा पातशाह आप लोगां कोल जांदे रहे। बाबा काशी गए बनारस गए हरिद्वार गए गया जी गए क्यों गए भई लोगां दा तीर्थां ते इकट्ठ हुंदा सी ते बाबा जी उथे अपने विचार सुणांदे सी लोगां नूं सीधे मार्ग ते लांदे सन। बटाले दे लागे बिल्कुल नजदीक क्योंकि बटाले विच गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे सौरा परिवार सी ते लागे अचल बटाला है उह सिद्धां दा बहुत वड्डा गढ़ शिवरात्रि दा मेला लगा होया सी ते गुरु नानक ने सुनहरी मौका तकिया कहण लगे मरदाने आ चल गरीब नवाज पातशाह सत वचन। भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते ने

खादी कुणस जुगी सिरा। जिस वेले बंदे नू अपनी हार हुंदी दिस पवे ना, ए आम बात है, फिर वो झगड़े ते उतर आंदे, और तां पेश जांदी कोई नहीं। जोगियां ने गुरु नानक बाबा नाल बहस करनी शुरू कर दिती। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे ने, कैसी बात सुनना, जरा प्यार नाल सुनना। कहंदे ने खादी खुण सुजुगी

कर मंगन जाई बिन दिते किच हाथ न आई ए सुन बचन जुगीसरा भाई साहब कहते हूं झगड़ा कर लगे ने गुरु नानक नु डराउन लगे ने अपनी शक्तियां दा प्रभाव पाता

के उड़न पंखी। भाई साहब कहने में कोई उड़न वाला पंछी बन रहा है, कोई बघियाड़ बन रहा है, कोई चीता बन रहा है, कोई शेर बन रहा है। एक पर कर करके उड़न पंखी, एक पर करके

हे नानक जी, तुहाडी बड़ी महिमा सुनी, मेरी सुनी नहीं वेख भी लई है। तुसी शक्तियां दे मुजस्मे हो, पर कुछ सानू भी विखाओ। सिद्ध बोलन सुन।

आसरा गुरु की संगत दा बाणी दा उस निरंकार वाहेगुरु दा आसरा। शिव रूपी करता पुरुष चले नाही धरत चलाई, सिद्ध तंत्र मंत्र कर चढ़ पे। रिधियां सिद्धियां दे मालक बने बैठे सन, गुरु नानक नु डरा रहे सन। भाई गुरदास कह रहे हैं, सिद्ध तंत्र मंत्र

बाबा जी जिस वेले मुल्तान गए ना ते उथे दे पीरा नु पता लगा के वड्डा पीर आया एदे अगे साडी दाल नहीं गलनी ते उन्हां ने अपने एक सेवक नु अपने चेले नु एक दुध दा छन्ना भर के भेजिया जिदा मतलब सी भी पीरीपुर मुल्तान इथे तेरी लोड़ ही नहीं इथे अगे पीरा नाल भरिया पिया तेरी की लोड़

एक लोभी पुरुष पदार्था विखे बड़ा लोभ करदा सी, पर लोकां नूं पत्यान वास्ते प्रभु दा सिमरन भी बड़ा करना कि मैं बड़ा भगत ज्ञानी हां, क्योंकि हजूर दा वचन है जो जाने हो भगत ज्ञानी, आगे ठाकुर तिल नहीं मानी, जो जाने हो कथनी करता व्यापारी वसुधा ज्यो बसता, साध संग जिन हो मैं मारी, नानक तांकू मिले मुरारी। भई रब दी प्राप्ति तां उना नूं ही होंदी है जो निम्रता दे नाल निष्कामता दे नाल मन करके परमेश्वर दी भगती करदे हन। ए लोकां नूं पत्याउण वास्ते विखाउण वास्ते बड़ियां मालां फेरदा है, बड़े सिमरन करदा है, बड़ियां बगल समाधां ला पैंदा है। ते बाबा फरीद जी कहंदे हन कि ए भगती भाई परवान नहीं, उसदे इस पखंड नूं देख के तां फरीद जी ने ए शलोक उचारण कीता, फरीदा जां लब तां नेहो क्या, जिथे लोभ है उत्थे नेहो क्या, उत्थे परमेश्वर दा प्यार की होना है, नेह की होना है, उत्थे तां केवल माया दा ही प्यार है। लब तां कूड़ा नेहो किचर घत लंघाइए, छप्पर टुटे मेहो। हे भाई जे पदार्थां दा लोभ है तां प्रभु विखे सच्चा प्यार किवें हो सकदा है, जे खुदा दा नेहो प्यार है तां पदार्थां दा लब करना तां फिर कूड़ा है, क्योंकि दो गल्लां इकट्ठियां नहीं हो सकदियां। जे प्रेम है तां लोभ नहीं, जे लोभ है तां प्रेम नहीं। इसलिए भाई जे प्यार करना है तां सच्चा प्यार कर गुरु दे नाल, ऐसे लेख ना लिख जदों तू अकाल पुरख वाहिगुरु दे दरबार विच जावे ते तैनू अखां नीवियां करनियां पैन, शर्मिंदियां होना पवे। इसलिए

आख्या ए सोना मनुच्छा जन्म अमृत वेला अमृत वेले रूपी सोना मनुच्छा जन्म प्राप्त होया है। ते तू इसनू सौके बतीत कर देवेगा। ऐ मेरे मन तू बहाने कर रहे हैं भाई गलियां चिकड़ दूर घर करने ने हो रब दे नाल प्रीति पौनी ते फिर सरफा करना भाई मते ए कंबली ए लोई भिज ना जावे तो फिर तेरा प्यार कदा होया। तां फरीद जी कहंदे हन गलियां चिकड़ दूर घर नाल प्यारे ने हो चला तां भिजे कंबली रहा तां टुटे ने हो आख्या भिजो सिजो कंबली अलो बरसे में हो। एवी तां उदे हुकम विच बारिश हुंदी है ते तू उदे हुकम दी अदूली करके जे सत संगत विच नहीं जांदा ए लेख ना लिख तेरी नितनेम दी कड़ी इत्थे तेरे आलस करन नाल जे बिना जपन दे बतीत हो जावे ए लेख।

的街，कोई मरना चाहूंगा। पर कबीर जी कहते हैं, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद। वो मौत नू आनंद क्यों कह रहे हैं भाई, जिन्होंने बाजी जीती, जो पुग गए, जो कुछ करना सी संसार से आके कीता, फिर उना दा आना जाना सफल है। गुरमुख आए जाए निशंग, इसलिए जे सौ वरिया जीवना आख्या, जे सैकड़े वरे भी कोई जी लवे, अंत नू ता भाई ये पांच भौतिक शरीर ते अग्नि

कि काल जो है ए मौत रूपी कुहाड़े नू हर वेले चुक के हर मनुख दे नाल है। परमेश्वर दे हुक्म अनुसार ए जीव आत्मा नू ले जांदा है। फरीद जी कथन कर दिया न, मैं ता अपने पति खुदा दी प्राप्ति नू चाहुंदा हां, ते तू मेरे अंगियार औगणा नू वेखना चाहुंदा है। इस दे विच कोई औगण होवे ता मैं इस नू फड़ के ले जावां, कदों इस दे श्वास समाप्त होण ते मैं इस नू ले जावां। तो फरीद जी अपने प्यार विच रंगे होए उस लोहार नू कह रहे हन, भाई तू अंगियार नू लोड़ रहे हैं, जंगलां विच असी रब नू लभ रहे हां। कंध कुहाड़ा सिर

खसरा। खालसा धर्म नहीं है, खालसा है पंथ। ते पंथ दा मतलब है राह, ते खालस दा मतलब है पवित्र। पवित्र राह दे उपर चलन वाला कोई महापुरख, कोई संत जन, कोई जग्यासु, जिस नूं पूरे गुरु की कृपा द्वारा इस राह दी सोझी हो जाए। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने इस दियां कुछ कुछ शर्तां दसियां, नियम दसे हन। भाई गुरसिख दी डेफिनेशन की है, ओ लिखदे ने भी गुरसिख भलके उठ कर अमृत वेले सरना वंदा, इशनान करना, गुरु की बाणी दा जाप करना, फिर सत संगत विच आके गुरबाणी दा कीर्तन श्रवण करना, सेवा करनी, गुरसिख साध संगत दी सेवा करनी, दसवंध गुरु दी समर्पित कर देना, ते आपा भी गुरु दी समर्पित कर देना। साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह कहंदे हन, जेड़ा जागत जोत नाल जुड़िया होया है, जागदी जोत नूं हमेशा जपे, चिरंकाल सदीव काल हिरदे दे अंदर उस नूं धारण करे, उस नूं खालसा कहा जांदा। ओह खालस हो जांदा, शुद्ध ते नरोल हो जांदा, जिहड़ा संसार दे वहमां भरमां तों दूर हो जांदा। ब्रत गोर मड़ी मट भूल ना माने, जिहड़ा इन्हां चीजां नूं ना मनदा होवे, जिहड़ा तीर्थ दान दया तप संजम इन्हां नूं एक अकाल पुरख तों बगैर ना मनदा होवे, क्योंकि एक अकाल पुरख महाराज दे सिमरन तो बगैर बाकी दियां चीजां सारियां अधूरियां हन। ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह ने खालसे दी डेफिनेशन उपमा कीती है, कहिंदे खालसा मेरा ही रूप है ते मैं इस दे अंदर निवास करदा हां। जेड़ा खालस शुद्ध स्वरूप नजर आउंदा होवे, गरीब नवाज सचे पातशाह कहिंदे मैं उस दे चरणा दी खाक नूं लोड़दा। धन गुरु रामदास महाराज दा।

धन गुरु तेग बहादुर सोच लै भाई धार लै अपने मन में इसनो धार लै मतलब वसा लै मन में सिर्फ चार दिन की गल है बंदा नाल तकबर फरिया कूड़े करदा माने मैं हां चतर सियाणा सुंदर शेर आप नू जाने आकड़ आकड़ चले किसे दे नख तले नहीं आने साई लोका जद फूका निकले आवे होश ठकाने ए बंदा जिन्ना मर्जी मान कर लवे पर उदो तक है जदो सब कुछ ठीक है जो थोड़ी भी चीज गलत हो जावे कहता जी मैं बड़ा तकड़ा हां बलवान हां पर एक दिन मंजे ते पैजे निढाल हो जाता है। धन गुरु तेग बहादुर मसालो अपने मन में ए राग सिंह

प्रहलाद जब तुझ राख ले हर जियो हर नाथ शुमार बजाया गुरमुखानु प्रतीत है हर जियो मन मुख परम भुलाया हर जी

0: हाथ सत तीर्थ परस किए, जैसे हाथ सत तीर्थ परस किए, जुग चार चलो कैलाश
1: जिना गुरमुखां दे कदम सत संगत वाले चल के जाते हैं। किड्डा वड्डा महात्म भाई साहब भाई गुरदास जी ने दसिया है कि जो गुरमुख जन सत संगत च बह के जपते हैं सतनाम, संगत च बैठ के वाहेगुरु जपन का किड्डा वड्डा महात्म है, पर एक शर्त है कि जपे गुरु चरणा दे नाल मन नूं जोड़े। जैसे अठ सठ तीर्थ पर

0: चरणपुर एक पैना जाए जल, सतगुर कोट पैना आगे हुए लेत है।
1: तुम एक कदम सतसंगत वाले चलना है ते गुरु तैनू करोड़ा कदमा अगो लैण आए। ऐसा गुरु क्यों ना ऐसे गुरु दे बलिहार सच्ची है। किन्ना कदमा ते लैण आउंदा है, कदों गुरु लैण आउंदा है। साहिब बाणी विच इसका हवाला दे रहे कि जह मार्ग के गने जाए ना कोसा, हर का नाम संगत। तू गुरु वल एक कदम रखता है, गुरु तैनू करोड़ा कदमा अगो लैण ले आ रहा है। क्यों? ये मेरा है, ये मेरे पासे आ रहा है। इसे लई साहिब बाणी विच कहंदे हन कि मित्र उस नूं बना, ओ तेरा सच्चा मित्र है जिहड़ा इत्थे भी ते दरगाह विच भी आके भाई ये मेरा है, भाई इसका हिसाब मेरे पासों दा। सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल, चलन जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े। ऐसा मित्र कौन है प्यार नाल आपको धन गुरु गोविंद सिंह। एक पिता एक सके हम बारिक, तू मेरा ऐसे गुरु तो सदके जाई, ऐसे गुरु तो बलिहार जाई। ये शब्द जो आप सरवण कर रहे हो धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी का ये शब्द है। पर जोत
2: काहे को दौलत है, तुमरी सुध सुंदर सिरे पदमा पतला है। And it's that same message. Why are you wandering? Your husband Lord is so beautiful. God has no lust, no anger, no greed, or worldly attachment. No illness, no fear. God has no body, but he bears love for all, and his love is without condition. He is without home and cannot be destroyed. God gives to those who know it and to those who don't. He gives the earth, he gives the heavens.

ठार केवन के नहीं निवल भयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा किन्हीं ग्रह तजवन खंड पाया किन्हीं मोन अधूत सदाया कोई कह तो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती।

उस अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर दे चरणा विचों हरी दा जश मंगो, नाम दी दात मंगो, क्योंकि दुनियावी पदार्थ मंगांगे, राज भाग धन दौलत तियां पुत्र महल माड़ियां, ओ एक दिन सब कुछ एथे रह जाएगा। जिन्हां ने हरी दा जश मंग लिया गुरु कोलों, हरी दा जश इत्थे भी सहायता करदा है, ते दरगाह विच भी जदों तू जाएगा तेरे नाल होवेगा। ए तेरा सच्चा साथी है, सच्चा मित्र है तेरा। जह मात पिता सुत मीत ना पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जै महा भयान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै। जै मुश्किल होवे अत पारी, हर को नाम खिन माए उधारी। खिन विच तेरा छुटकारा हो जाएगा, जे हरी दा जस तेरे पले होवेगा। इसलिए धन गुरु अर्जन दे पातशाह बख्शिश कर रहे हैं, मांगना मांगन नीका। सारी 84 लख जून कीड़ी तो लै के ब्रह्मा तक सारे ही मंग रहे हैं, ते गुरु देव ही रहा है। पर सारिया मंगा विचों उत्तम मंग की है, गुरु दे दर तो नाम दी दात मंगना, गुरु दा जस मंगना। क्योंकि जिन्हां नू जस मिल गया गुरु दा, जिस नू बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। ओ पातशाहां दे पातशाह बन जांदे हन जिन्हां नू प्रभु दा सिमरन प्राप्त हो गया, उस ईश्वर दा नाम मिल गया। इसलिए सानू गुरु दा